संत तुकड़ोजी महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे बबनराव नावड़ीकर के स्वर में। आइए कार्यक्रम के अंत में अब सुनते हैं पंडित छोटा गंधर्व के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

पंडित छोटा गंधर्व के स्वर में आप सुन रहे थे संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। श्रोताओं, इसी भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब हम समाप्त कर रहे हैं। डी संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे थे रागम 24/7 DTH चैनल पर। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग नट भैरव पर वायोलिन वादन. कलाकार हैं साकेत साहू. आपके साथ तबले पर हैं अनिरुद्ध मुखोपाध्याय. तो लीजिए प्रस्तुत है राग नट भैरव पर वायोलिन वादन. कलाकार हैं साकेत साहू.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present Hindustani instrumental recitals. Listen first to a violin recital in the rag Nat Bhairav. Our artist is Saket Sahu. Accompanying our artist on the tabla is Aniruddha Mukhopadhyay. Listen now to the violin in the rag Nat Bhairav. Our artist Saket Sahu.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग नट भैरव पर वायलिन वादन सुन रहे थे। कलाकार थे साकेत साहू, आपके साथ तबले पर थे अनिरुद्ध मुखोपाध्याय।
1: ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग अहीर भैरव में बांसुरी वादन। आज एक कलाकार हैं स्वपन कुमार घोष। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशी सरकार। तो लीजिए प्रस्तुत है राग अहीर भैरव में बांसुरी वादन, कलाकार स्वपन कुमार घोष।
2: You were listening to a violin recital in the rag Nat Bhairav. Our artist was Saket Sahu. Accompanying our artist on the tabla was Aniruddha Mukhopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहीर भैरव में बांसुरी वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे स्वपन कुमार घोष। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a flute recital in the rag Ahir Bhairab. Our artist was Swapan Kumar Ghosh.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल. आज के कार्यक्रम में सुनते हैं पखवाज वादन. प्रारंभ में सुनते हैं पंडित रामाशीष पाठक द्वारा प्रस्तुत पखवाज पर ताल चौताल. आपके साथ हारमोनियम पर है राजीव तांबे.

だれもいるんだ。

आप सुन रहे थे पंडित रामाशीष पाठक द्वारा प्रस्तुत पखवाज पर ताल चौताल। आपके साथ हारमोनियम पर थे राजीव तांबे। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं पंडित वसंतराव घोरपड़कर द्वारा प्रस्तुत पखवाज पर ताल आदि ताल।

अभी आपने सुना पंडित वसंतराव घोरपड़कर द्वारा प्रस्तुत पखवाज पर ताल आदि ताल। आज के कार्यक्रम में प्रारंभ में आपने सुना पंडित रामाशीष पाठक द्वारा प्रस्तुत पखवाज पर ताल चौताल और अंत में पंडित वसंतराव घोरपड़कर द्वारा प्रस्तुत पखवाज पर ताल आदि ताल। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी 24/7 DTH चैनल। भारतीय संगीत हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है विकास बाबू और साथियों का शहनाई वादन. पहले पेश है राग मलकौंस में आलाप. विलंबित गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a Shehnai recital by Vikas Babu and Company. Up is in Rag Malkons. The Vilambit Gat is set to Ek Tal and Drut Gat is set to Teen Tal.

0: अभी आप विकास बाबू और साथियों का शहनाई पर बजाया राग मालकों सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग मारू बिहाग, आलाप और द्रुतगत एक ताल में निबद्ध है।
1: You were listening to a Shehnai recital in Raag Malkons by Vikas Babu and Company. Now listen to a Raag Maru Bihag.

0: अभी आप विकास बाबू और साथियों का शहनाई पर बजाया राग मारू बिहाग सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए ये धुन।
1: यू वर लिसनिंग टू अ शहनाई रिसाइटल इन राग मारू बिहाग। नाउ लिसन टू अ धुन।

0: अभी आप विकास बाबू और साथियों का शहनाई वादन सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: You were listening to a Shehnai recital by Vas Babu and Company. This program is the presentation of All India Radio, Delhi.

Then I get to get the

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। सुनते हैं तार शहनाई वादन और सुंदरी वादन। प्रारंभ में सुनते हैं तार शहनाई वादन। कलाकार है मधुकर गोड़वलकर। आपने तार शहनाई पर प्रस्तुत किया राग भटियार सुनते हैं। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है माणिकराव पोपटकर। तो आइए सुनते हैं तार शहनाई पर राग भटियार, कलाकार मधुकर गोड़वलकर।

अभी आपने सुना था शहनाई पर राग भटियार। कलाकार थे मधुकर गोळवलकर। आपके साथ तबले पर थे माणिकराव पोपटकर। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं सुंदरी वादन। कलाकार है भीमण्णा जाधव। अपने सुंदरी पर प्रस्तुत किया राग तोड़ी सुनते हैं। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है विकास पुरंदरे। तो आइए सुनते हैं सुरी पर राग तोड़ी, कलाकार भीमण्णा जाधव।

श्रोताओं आप सुन रहे थे सुंदरी पर राग तोड़ी, कलाकार थे भीमण्णा जाधव। आपके साथ तबले पर थे विकास पुरंदरे। आज के कार्यक्रम में प्रारंभ में आप सुन रहे थे तार शहनाई पर राग भटियार, कलर थे मधुकर गोळवलकर और अंत में आपने सुना सुंदरी पर राग तोड़ी, कलाकार थे भीमण्णा जाधव। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। राम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डी टी

0: पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग मियां की तोड़ी में गिटार वादन। आज के कलाकार हैं पंडित देवाशीष भट्टाचार्य। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं समर साहा।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दिस मॉर्निंग We first present a guitar recital in Rag Miyan Ki Tori. Our artist this morning, Pandit Devashish Bhattacharya, accompanying on the tabla, Samar Saha. Now, listen to a guitar recital in Rag Miyan Ki Tori by our artist, Pandit Devashish Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग मियां की तोड़ी में गिटार वादन सुन रहे थे। आज कलाकार थे पंडित देवाशीष भट्टाचार्य। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे समर साहा। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग परमेश्वरी में सरोद वादन। आज के कलाकार हैं संजय कविराज। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं हिंडल मजुमदार।
1: यू आर लिसनिंग टू अ गिटार रिसाइटल इन राग मियां की तोड़ी बाय आवर आर्टिस्ट पंडित देवाशीष भट्टाचार्य एकम्पनिंग ऑन द तबला समर साहा। दिस इज रागम 24/7 ऑन डीटीएच Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a sarod recital in Rag Parameshwari. Our next artist, Sanjay Kaviraj, accompanying on the tabla, Hindol Majumdar. Now, listen to a sarod recital in Rag Parameshwari by our artist, Sanjay Kaviraj.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग परमेश्वरी में सरोद वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे संजय कविराज। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे हिंडल मजुमदार। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ सरोद रिसाइटल इन राग परमेश्वरी बाय आवर आर्टिस्ट दिस मॉर्निंग संजय कविराज एकॉम्पैनिंग ऑन द तबला हिंडोल मजुमदार। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एंड प्रोड्यूस्ड इन द स्टूडियोज ऑफ ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता फॉर रागम 24/7 एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन. कलाकार हैं पंडित देवव्रत चौधरी. राग है कोमल ऋषभ आसावरी. आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप और विलंबित गत. विलंबित गत 3 ताल में निबद्ध है. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सितार रेसाइटल बाय पंडित देवव्रत चौधरी. द रेंडिशन कमेंस विद द राग कोमल ऋषभ आसावरी.

अब आप सुनेंगे राग रागेश्री। आप प्रस्तुत कर रहे हैं रागेश्री में आलाप और दो गतें, जो क्रमशः तीन ताल में निबद्ध हैं। कलाकार हैं पंडित देवव्रत चौधरी। नाउ लिसन टू राग रागेश्री बाय पंडित देवव्रत चौधरी।

आप सुन रहे हैं सितार वादन, कलाकार हैं पंडित देवव्रत चौधरी। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित देवव्रत चौधरी। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित देवव्रत चौधरी से राग भैरवी में एक धुन। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स भैरवी धुन।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन। कलाकार थे पंडित देवव्रत चौधरी। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित देवव्रत चौधरी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एंड एक्सक्लूसिव इंडियन।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत. आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वागता मुखर्जी का शास्त्रीय गायन. सर्वप्रथम प्रस्तुत है राग जोगिया. विलंबित तीन ताल के बोल हैं भजले गुरु का नाम मनवा. तबले पर संगत कर रहे हैं पार्थो प्रतिम दास तथा वॉयलिन पर संगत कर रहे हैं भानु प्रताप बनर्जी.

अभी आप सुन रहे थे स्वागता मुखर्जी द्वारा गाया राग जोगिया। तबले पर संगत कर रहे थे पार्थ प्रतिम दास तथा वॉयलिन पर संगत कर रहे थे भानु प्रताप बनर्जी। अब प्रस्तुत है इन्हीं का गाया राग छायानट। विलंबित एक ताल के बोल हैं एरी अब गुथला और द्रुत तीन ताल के बोल हैं प्यारी लगली लाडली।

अभी आप सुन रहे थे स्वागता मुखर्जी का गाया राग छायानट। अब प्रस्तुत है इन्हीं का गाया राग देश। झप ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं, देखो री न माने श्याम। तबले पर संगत कर रहे हैं पार्थ प्रतिम दास तथा वॉयलिन पर संगत कर रहे हैं भानु प्रताप बनर्जी।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे स्वागता मुखर्जी द्वारा गाया राग देस। तबले पर संगत कर रहे थे पार्थ प्रतिम दास तथा वॉयलिन पर संगत कर रहे थे भानु प्रताप बनर्जी। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. लीजिए अब सुनिए निशेंद्र किंजल का सितार पर बजाया राग यमन में आलाप. दिमित और द्रुतगत दोनों ही तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चटर्जी ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ सितार रिसाइटल बाय श्री निशेंद्र किंजल. ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री प्रसून चटर्जी. श्री निशेंद्र किंजल फर्स्ट प्रेजेंट्स राग यमन इन विच यू विल हियर द आलाप followed by Vilayat and Drutgat, both are set to Teen Tal.

0: अभी आप निशेंद्र किंजल का सितार पर बजाया राग यमन सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चर्जी ने। और लीजिए अब सुनिए राग जय जयवंती, विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने।
1: दैट वॉज राग यमन। श्री निशेंद्र किंजल नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग जय जयवंती, इन विच यू विल हियर द विलंबित एंड द्रुतगत सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप निशिंद्र किंजल का सितार पर बजाया राग जय जयवंती सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए ये धुन।
1: यू जस्ट हर्ड राग जय जयवंती। श्री निशिंद्र किंजल कंक्लूड्स हिज सितार रिसाइटल विद अ धुन।

0: अभी आप सितार पर ये धुन सुन रहे थे। तबले पर संगति की थी प्रसून चटर्जी ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद दैट धुन वी कम टू द एंड ऑफ द सितार रिसाइटल बाय निशिंद्र किंजल। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री प्रसून चटर्जी। दिस प्रोग्राम वाज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं समर्थ रामदास की भक्ति रचना कुमुदिनी पेडणेकर के स्वर में।

समर्थ रामदास की भक्ति रचना आप सुन रहे थे कुमुदिनी पेडणेकर के स्वर में। भक्ति संगीत कार्यक्रम में आगे की भक्ति रचना है संजीव अभ्यंकर के स्वर में।

संत जनाबाई की भक्ति रचना आप सुन रहे थे, जिसे गाया था मालती पांडे ने। अब हम सुनाने जा रहे हैं शरद जांभेकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे शरद जांभेकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। भक्ति संगीत कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना है संजीवनी जोशी के स्वर में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना मधुसूदन कानेटकर के स्वर में। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है आरती ठाकुर के स्वर में।